0: उदेश टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ मा
2: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0656 53 63 53 98 550 77 061 र 98 550 77 053
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0656 493 440 493 580 र 98 550 26 440
0: It's 10 o'clock. अहिले 10 बजेको छ।
4: 10 बज्यो।

0: सेवा ओडी भिडियो एक्सरे द्वारा बच्चा को संपूर्ण अंग तथा रोग देख्न सकिने
1: मेरुदण्ड तथा जोर्नी प्रत्यारोपण सहित को हाड जोर्नी सेवा ईईजी ईसीटी सहित को मनोरोग सेवा
0: यूरोलोजी मा एमसीएस गर्नु भएका विशेषज्ञ द्वारा सेवा
1: प्लास्टिक सर्जरी सम्बन्धी उपचार सेवा
2: मौलाकालिका अस्पताल भरतपुर 11 बाईपास रोड फोन 056 493 7038 मोबाइल 98550 88002

0: टाइम चेक इस समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7071 र 98 550 7073
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 2640
0: It's 11 o'clock अहिले 11 बजेको छ।

0: देश टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ मा
2: दक्षिण कोरिया मा पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0956 5359

0: इस टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ मा
2: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 53 69 53 98 550 77 061 र 98 550 77 053
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0556 93 440 493 580 र 98 550 26 440
0: It's 3 o'clock. अहिले 3 बजे को साथ
4: रेडियो नेटवर्क अहिले दिउँसो को 3 बज्यो
5: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
4: राष्ट्र को शान किसान
5: अ कम्प्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

0: इस टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 161 र 98 5550 7053।
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4943 4440 4395 80 र 98 5550 2640।
0: It's 6 o'clock. अहिले 6 बजेको छ।
4: पिट पाइपिंग सॉल्यूशंस।

0: 4D वीडियो एक्सरे द्वारा बच्चा को संपूर्ण अंग तथा रोग देखना सकिने
1: मेरुदंड तथा जोर्नी प्रत्यारोपण सहित को हाड जोर्नी सेवा ईईजी ईसीटी सहित को मनोरोग सेवा
0: यूरोलॉजी मा एमसीएस गर्नु भएका विशेषज्ञ द्वारा सेवा
1: प्लास्टिक सर्जरी सम्बन्धी उपचार सेवा
2: मौला कालिका अस्पताल भरतपुर 11 बाईपास रोड फोन 056493 7038 मोबाइल 9855888002